याचे स्वयं स्वकृतिनां भवनेश्व लक्ष्मी पापात्मनां कृतधीनां हृदयेश बुद्धि श्रद्धा सतां कुलजना प्रहवस्य लज्जा तां त्वां नतास्त परिपालय देवि विश्वम्।